0: rangji kirtan kli nugu shipa gan gamul hosu da lutar
1: gamul hosu da lu gaim
0: ta lur ga ara
1: ari ri
0: nari lur gi gamul hosu ta sek morela
1: ri
0: tag chu lo chung lu tigra mam jang lu khsam lur go utrela ri ri ri temris ya topu na chenda doji gen da
1: doji ja
0: ri topu doji ja teng lin chenda shar ga ngani wa to song ko ji ma kon ba yo ting shu jong ru kana shar ga ling ga na chwa ni ku demo
1: ya ya
0: ya demo ta hi de la ये जो बना बताएं दी जो कहेंगे तेरे लिए लेंसन दें तो उनसे मतलब नहीं जो लेंसन लेंसन दी जो अमरिंग गांव करवा लड़ जाही दंग नो रोज़ तारकल वाइफ शिक्ल उसे चिप तारकल वाकन तक चलाने तो सोनू में लेंचिंग ना चुप जाके ना बात तो अमरिंग गांव जेनी तंग जेमी लेंसन आज तो थाई अंजल जाही दे लख